शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 MHz पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे किरनी। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है यादें। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
3: सभी सुनने वालों को मेरा यानी किरनी का नमस्कार। आपका स्वागत है एक शानदार संगीत यात्रा में। इस शो में हम लेकर आ रहे हैं आपके दिलों को छू लेने वाले रेट्रो हिट्स, जिनकी दुनिया हमेशा ताजगी का एहसास कराती है। और आज का हमारा टॉपिक है यादें। यादें भी अजीब होती है, दिल को बहलाती है, कभी हंसा देती है, कभी रुला जाती है।

बिछड़ कर भी जो पास रह जाती है वो यादें ही तो है जो कभी नहीं जाती है। यादों का असर कुछ ऐसा है जैसे बरसात की पहली बूंद का नशा है।

इसके साथ ही आज के रेट्रो हिट्स प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है। अब बारी है अलविदा लेने की, लेकिन याद रखिए रेट्रो हिट्स का सफर कभी खत्म नहीं होता। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे पुराने गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था यादें। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का था। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: फिर क्यों मुझको
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

एक एक्टर को फिल्में कैसे देखनी चाहिए? अक्सर लोग फिल्में देखते हैं एंटरटेन होने के लिए, लेकिन एक एक्टर को फिल्में देखनी होती हैं सीखने के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में या यूं कहें इस वीडियो सीरीज में हम यही सीखेंगे कि एक एक्टर फिल्म को कैसे देखे। सिर्फ कहानी नहीं, सिर्फ हीरो या विलन नहीं, बल्कि ये कि एक एक्टर ने अपने इमोशंस को कैसे अप्रोच किया, सीन में अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। अब हम ये सीखेंगे कि डायलॉग के पीछे, इनफैक्ट डायलॉग ना बोलें, इनको लाइंस बोलें, कि लाइंस के पीछे कौन सा सबटेक्स्ट चल रहा है। कैमरे के सामने लाउड एक्टिंग क्यों नहीं होती है और कैसे साइलेंस भी एक्टिंग बन जाता है। तो इस सीरीज में हम फिल्में रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें एक्टिंग क्लास की तरह यूज कर रहे हैं। हर वीडियो में एक फिल्म होगी और एक सवाल होगा कि इस फिल्म से एक एक्टर क्या सीख सकता है। अगर आप एक्टर हो या एक्टर बनना चाहते हो तो यह सीरीज आपके लिए है, क्योंकि जब आप फिल्में सही तरीके से देखेंगे या देखना सीख लोगे तो आप बिना स्टेज पर गए, बिना कैमरे के सामने आए, रोज एक्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आज की फिल्म से एक्टिंग का पहला सबक शुरू करते हैं। आज की फिल्म है सत्यजीत रे साहब की नायक। उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाइए देखिए, यूट्यूब पर उपलब्ध है। खैर, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि अगर कल आपका नाम, फेम, इमेज सब कुछ चला जाए तो क्या आप खुद से नजर मिला पाओगे। सत्यजीत रे की फिल्म नायक इसी सवाल का जवाब है। यह फिल्म एक मशहूर स्टार की कहानी है, नाम है अरिंदम मुखर्जी। एक ट्रेन का सफर, कोई फाइट नहीं, कोई विलन नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, सिर्फ एक इंसान और उसका दिमाग। एक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसकी इमेज। अरिंदम सक्सेसफुल एक्टर है, कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ है। डर इस बात का कि कहीं लोग उसका असली चेहरा ना देखे, और ये डर हर एक्टर के अंदर होता है। जब आप इमेज बचाने लगते हो, एक्टिंग मर जाती है। बढ़िया एक्टिंग तब होती है जब बाहर और अंदर अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं। नायक की एक्टिंग लाइन से नहीं चलती, वो चलती है सबटेक्स्ट से। अरिंदम जो बोलता है वो सच नहीं होता, सच होता है जो वो छुपा रहा है। लाइंस ऑडियंस के लिए होती हैं, एक्टर का काम होता है जो नहीं बोला गया उसे जीना। हर लाइन को बोलने से पहले बस इतना सोचो कि मैं यहां क्या छुपा रहा हूं, या फिर असल में क्या बताना चाह रहा हूं। इस फिल्म के ड्रीम सीन्स एक्टिंग का एडवांस लेवल है। यहां लॉजिक नहीं चलता, यहां साइकोलॉजी चलती है। गिल्ट, फियर, फेलियर का डर, सक्सेस का प्रेशर, ये सब वर्ड्स में नहीं, फीलिंग्स में आता है। उत्तम कुमार जी यहां थिएटर के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो कैमरे के लिए एक्टिंग को छोटा कर देते हैं, यानी कि कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, कैमरा अपने आप सब कुछ देख लेगा। आंखों की हल्की सी मूवमेंट, सांस का बदलना, सब कुछ देख लेगा। याद रखो, कैमरा झूठ पकड़ लेता है, इसलिए सिनेमा एक्टिंग में फील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखाना नहीं। नायक एक कड़वा सच दिखाती है। सक्सेस के साथ एक्टर का आईडी भी बढ़ता है। अब ये आईडी क्या होता है मैं बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बेटर है अपने आप थोड़ी रिसर्च करो। हाँ, बहरहाल तो मोटा माटी ये समझ लो कि उस एक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सीन का रिदम क्या है, टेम्पो क्या है,
मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, इंस्टा पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आई एम ऑलवेज राइट। और ये आईडी सबसे पहले लिसनिंग को मार देता है। जिस दिन आप सुनना बंद कर देते हो ना, उस दिन से आप एक्टर नहीं रहते, कुछ और बन जाते हो। नायक हमें हीरो बनना नहीं सिखाती, ये फिल्म सिखाती है अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करना। जो एक्टर अपनी कमजोरी से नहीं भागता वही सच्चा एक्टर होता है। अब बात करते हैं होमवर्क की। भाई अगर वीडियो देखा है तो होमवर्क भी तो कुछ करोगे ना, तभी तो सीखोगे, नहीं तो सोचो अगर आपकी लाइफ पर नायक जैसी फिल्म बने तो ट्रेन के उस सफर में आपका कौन सा डर आपके सामने आएगा, उसका जवाब लिखो। और जब ये जवाब लिख लोगे वहीं से आपकी एक्टिंग शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को एक बार नहीं बार बार देखो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि कौन सा सीन आपको अनकंफर्टेबल कर रहा था, क्योंकि जो अनकंफर्टेबल करे वही एक्टर को ग्रो करता है।

जहां पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या, उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्रे तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या, उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या, उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी

अपनी खामोश जिंदगी में बुलाना मुझको, अपने हसीन ख्वाब की ताबीर बनाना मुझको। मैं जो पूछूं तुम्हारा हाल दिल, तू अपनी हर धड़कन की आवाज सुनाना मुझको। मैं जो कभी रूठ जाऊं तुमसे, तू बहुत प्यार से मनाना मुझको। जो कभी हो दिल में हसरत तुम्हारी, बेझिझक अपनी हर हसरत बताना मुझको।

जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर ये ख्वाब देखता हूँ तो ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, पर उसकी परवाह करना मुझे अच्छा लगता है।

गिरे हैं, हर बूंद में तुम्हारी खुशबू की महकार है, और तभी मोतर हुआ है ये जहां। मेरे बरसों के तस्वुर में तुम अचानक यूं दस्तक दे गए, ये मैंने कभी सोचा न था, और ख्याल बनकर उतर जाओगे मेरे वजूद में, इसका तस्वुर मैंने

0: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 6। पेश करेंगे आरजे गिरनी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सरगम। सभी दोस्तों को किरनी का नमस्कार। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए हुए गाने के साथ, जिसको म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, और फिल्म का नाम है अवतार।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको अपने संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है लोफर और इस गाने को अपनी आवाज दी है आशा भोसले ने।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म सच्चाई का गाना, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और जिसे अपने संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और अपनी खूबसूरत आवाजों में गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

अब पेश है मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत दिया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम। आप पेश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत दिया हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, फिल्म बगावत से, और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है खयाम के म्यूजिक दिया हुआ, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है शंकर जय किशन का संगीत दिया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं जलाल मुरादाबादी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है बरसात।

अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी और मुकेश के गाए हुए गाने से, जिसका म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और जिसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिए। नंबर है 7056413010। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 6, पेश किया आरजे गिरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। प्रस्तुत करेंगे राहुल अलियान, स्क्रिप्ट निया जैन का, एडिट निर्देशन भारत सोपोरी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7 और आज हमने चयन किया है फिल्म चलते का नाम गाड़ी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। आज हम आपको सुनाएंगे फिल्मी किस्से फिल्म चलते का नाम गाड़ी का, जो हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाई एक साथ नजर आए। ऐसा बहुत कम फिल्मों में हुआ है। इस फिल्म में तीनों भाइयों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म में मधुबाला ने भी अहम भूमिका अदा की है। फिल्म को सत्यन बोस ने निर्देशित किया था और इसका संगीत SD बर्मन ने दिया था। आप बने रहे हमारे साथ, आपको इस फिल्म के और भी फिल्मी किस्से सुनाएंगे और इसी फिल्म के मनमोहक गीत भी।
1: हम थे वो थी हम थे

Yeah! Yeah!

हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: हम थे मोती और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: इस फिल्म का उद्देश्य है कि जो काम करता है वह ठीक है, चाहे वह कैसे भी काम करे। यह संदर्भ संभवतः तीनों भाइयों की पुरानी घिसी पीटी कार की ओर है, जो ज्यादातर खराब हो चुकी है फिर भी काम करती है। फिल्म के दूसरे गाने बाबू समझो इशारे के शूट के दौरान कैमरा पर्सन आलोक दास गुप्ता की कार से टक्कर हो गई थी। यही नहीं, एक गाने के शूट के दौरान आलोक तालाब में गिर गए थे और डूबने ही वाले थे, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था।
0: बाजू

0: है प्यारे।
1: इस फिल्म के साथ ही इसके गाने भी हिट हुए थे और 5 रुपया 12 आना तो आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी कहानी है? दरअसल किशोर कुमार पर इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से 5 रुपया 12 आना का उधार था, जिसको लेकर वो मस्ती में गाते थे। इस बारे में अमित कुमार ने रिवील किया था।

इसके साथ ही मधुबाला की 1958 की लगातार चौथी बड़ी हिट फिल्म बन गई, जिसे 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शीर्ष महिला सितार के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। फिल्म के एक गाने में मधुबाला को विलेन सज्जन प्रपोज करता है, लेकिन मधुबाला इसे कंफर्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह थी कि उन्हें लग रहा था कि उनके डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं। हालांकि निर्देशक बोस के समझाने के बाद आखिर में मधुबाला मान गई। इसी फिल्म के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार की नजदीकियां भी बढ़ी और दोनों की ये नजदीकियां हाल कैसा है जनाब का के शूट के दौरान हुई और बाद में उन्होंने शादी कर ली।

0: कहा जाता है इस फिल्म का निर्देशन पहले बंगाली डायरेक्टर कमाल मजूमदार करने वाले थे, लेकिन मुहूर्त के 3 घंटे पहले ही उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया और वजह बताई कि वो तीनों गांगुली ब्रदर्स को लेकर हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब कमाल मजूमदार ने फिल्म से इनकार कर दिया तो किशोर कुमार सत्यन बोस के पास गए और बात बन गई। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार और अनूप कुमार को किशोर कुमार ने ही मनाया था। सिर्फ यही नहीं, फिल्म के लिए पिता की कार का कंसेप्ट भी उन्होंने ही लिखा था।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है।

0: फिल्म शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने सेट पर खूब मस्ती की और कई बार सीन में बदलाव भी किए जो बाद में फिल्म में रखे गए। ये फिल्म बहुत कम बजट में बनाई गई थी। इस फिल्म को लेकर किशोर कुमार को लगता था कि ये फ्लॉप हो जाएगी। दरअसल किशोर कुमार चाहते थे कि उनकी आय कम रहे और इनकम टैक्स में घाटा दिखा सके, लेकिन इसकी कॉमेडी, संगीत और कहानी से इसे सुपरहिट बना दिया गया। किशोर कुमार द्वारा फ्लॉप होने की उम्मीद के साथ चलती का नाम गाड़ी ने बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की, जो अंततः बोस और गांगुली भाइयों का सबसे सफल काम बन गया और उस साल की दूसरी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बाद में किशोर कुमार ने इस फिल्म के सभी अधिकार अपने सचिव अनूप शर्मा को दे दिए।
1: अरे अरे अरे रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी,

कर रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी चुभ जाए।

चलती का नाम गाड़ी के बारे में जिस बात का अक्सर जिक्र किया जाता वह है महिला का चित्रण। मधुबाला का किरदार एक साधारण रूप से आजाद महिला का है जो अपनी कार चलाती है और पुरुष प्रधान दुनिया में अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए अटल है। अनूप कुमार की प्रेमिका पेट्रोल पंप चलाती है। अशोक कुमार की पूर्व प्रेमिका की जबरन शादी कर दी गई थी, लेकिन जब वे 10 साल बाद मिलते हैं तो वे उसे वापस लेने के बारे में दोबारा नहीं सोचता। 1950 के दशक या वास्तव में 1960 या 1970 के दशक की किसी अन्य हिंदी फिल्म के बारे में नहीं सोच सकता जिसमें महिला को पुरुष के समान माना गया हो और जिसमें सभी पुरुष नायक कम अंतरराष्ट्रवादी हो।

आबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, और हम थे वो थी और समा रंगीन, जैसे गाने उस समय बहुत हिट हुए थे और आज भी लोकप्रिय हैं। और साथ ही यह फिल्म चलती का नाम गाड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्म है, जिसने अपनी छवि लोगों के मन में हमेशा के लिए छोड़ दी है।

और इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त राहुल अलियान को दीजिए आज्ञा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नई फिल्म और फिल्मी किस्सों के साथ। खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। आज की फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी। रिकॉर्ड व प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। स्क्रिप्ट तैयार किया निया जैन ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन ना जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

0: योसा एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मेहरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली जॉनिका।

0: तो कौन मांगता?
1: जानी जानी जानी का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जोली जोली, जोनी का दिल तुम पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर में

0: दिलों में प्यार का जज्बा जगाए रखते हैं, हम अपनी लई से फिजा को सजाए रखते हैं। यूं तो संगीत के सुर हर तरफ बिखरे हैं, पर हम आपकी फरमाइश से रिश्तों को सजाए रखते हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी, और आपके अपने मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता आप सुन रहे हैं। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। दोस्तों, समय हो चला है आपके और हमारे पसंदीदा शो आपकी फरमाइश का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, या आपकी फरमाइश का मतलब सिर्फ एक गाना बजा देना भर नहीं है। ये मंच है आपकी भावनाओं का, आपकी यादों का और आपके अपने जज्बातों का। हम आपके भेजे हुए संदेशों और आपकी फरमाइशों के जरिए आपकी भावनाओं को हजारों लाखों श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। यानी हम गीतों के धागे से दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करते हैं। और आज का ये शो बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि आज इस सुरीले सफर में मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही बेहतरीन और सुरीली आवाज। ये आवाज आज पहली बार रेडियो वितस्ता के मंच से आप सभी तक दस्तक देगी, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दस्तक बहुत पसंद आएगी।
1: शुक्रिया भरत जी, और FM 90.0 रेडियो वितस्ता सुनने वाले सभी प्यारे श्रोताओं को अन्नु का भी बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ इस खूबसूरत शो का हिस्सा बनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है।
0: हमें और हमारे पूरे रेडियो वितस्ता परिवार को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि अन्नु का अंदाज बयां और उनकी आवाज की सादगी सीधे आपके दिलों तक जरूर पहुंचेगी और आज की दोपहर को और भी यादगार बनाएगी।
1: तो फिर देर किस बात की, थाम लीजिए रेडियो वितस्ता का हाथ, करते हैं शुरुआत आज के फरमाइशी गीतों का सफर। प्रोग्राम आपकी फरमाइश में लेते हैं पहली फरमाइश, जो आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बड़े दिल वाला का गीत। गीत के बोल हैं अभी ना जा आज कहीं। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म 20 साल बाद का गीत। गीत के बोल है जरा नजरों से कह दो। इस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार ने। आइए पेश करते हैं इन सभी का ये मनपसंद गीत।
1: नजरों से कह दो जी।

लेती हूँ अगली फरमाइश जो आई है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आशा से गीत। गीत के बोल हैं धक धक से धड़कना सिखा दे। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

जी हाँ श्रोताओ, आपकी नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है कस्बा ब्राडा जिला अंबाला हरियाणा से, भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म चौकीदार का गीत। गीत के बोल है ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। रवि कुमार राहुल के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद गीत।

0: लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है गांव जुगुड़ी, जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणधीर भांगर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बॉबी से गीत, और गीत के बोल हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो। इस गीत को मधुर आवाज दी है शैलेंद्र सिंह और लता जी ने। रणधीर भांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

सभी श्रोताओं के लिए एक और फरमाइश हम पेश करते हैं जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधु। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर, पवनीत कौर और सारा संधु परिवार। और साथ में बंशीलाल संधु हमें लिखते हैं राम राम जी। हम सभी की ओर से आप सभी को और सभी श्रोताओं को राम राम। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक फूल दो माली से गीत। गीत के बोल है ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए प्रस्तुत है बंशीलाल संधु और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत या कोई भी लोक गीत सुनना चाहते हैं, आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आपको लिखना होगा अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम जो आपका फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं, और साथ में आपको लिखना होगा कि आप कहां से लिख रहे हैं। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेता हूं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मदारी का गीत। गीत के बोल है दिल लूटने वाले जादूगर। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने। पीएस नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। और ये हमें प्यार भरा नमस्कार भी भेज रहे हैं। आप सभी को हमारी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं इन सभी का ये मनपसंद गीत।

तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अगली फरमाइश का, जो आई है सेक्टर 18, जगाधरी, जिला यमुनानगर। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन, मीनाक्षी, पुलोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आपकी कसम से गीत, और गीत के बोल हैं जिंदगी के सफर में। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का पसंदीदा गीत।

0: जी हाँ श्रोताओ, ये था आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए आज्ञा। आशा करती हूँ मेरी आज की ये पहली प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: चल दी।
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: 90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगा हर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

दोस्तों बोजन एफएम नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बगत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 7। आज का कार्यक्रम आधारित है जाने माने गायक यशुदास पर। प्रस्तुत करेंगे आज किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक खास म्यूजिकल सफर यशुदास के गानों के साथ। आपको लेकर जा रहे हैं एक अनोखे संगीत के सफर पर, जहां हम यशुदास के कुछ अनमोल गानों को सुनेंगे और उनकी कहानी को जानेंगे। यशुदास का जन्म 10 जनवरी 1940 में कोचीन केरल में हुआ था। उनके पिता ऑगस्टाइन जोसेफ एक मंजे हुए मंचे कलाकार एवं गायक थे, जो हर हाल में अपने बड़े बेटे यशुदास को पार्श्व गायक बनाना चाहते थे। यशुदास के पिता जब वे अपने रचनात्मक करियर के शीर्ष पर थे, तब कोचीन स्थित उनके घर पर दिन रात दोस्तों और प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहता था, किंतु जब बुरे दिन आए तब बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो मदद को आगे आए। यशुदास का बचपन गरीबी में बीता, पर उन्होंने उस छोटी सी उम्र से अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे और ठान लिया था कि अपने पिता का सपना पूरा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने ताने सुनने पड़े जब एक ईसाई होकर वे कर्नाटक संगीत की दीक्षा लेने गए। एक समय ऐसा भी आया कि वे अपने RLV संगीत एकेडमी की फीस भी बमुश्किल भर पाते थे। ऐसा भी दौर था जब चेन्नई के संगीत निर्देशक उनकी आवाज में दम नहीं पाते थे और EIR त्रिवेंद्रम ने उनकी आवाज को प्रसारण के लायक नहीं समझा, लेकिन जिद के पक्के उस कलाकार ने सब कुछ धैर्य के साथ सहा।

एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर। आदि नारायण शुरू के इस कथन को अपने जीवन का मंत्र मानने वाले यशोदास को पहला मौका मिला 1961 में बनी फिल्म कला पदुकल से। प्रारंभ में उनकी शास्त्रीय अंदाज की सरल गायकी को बहुत सी नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यशोदास ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत प्रेमियों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। भाषा उनकी राह में कभी दीवार नहीं बन सकी।

दक्षिण के सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने के बाद यशोदास ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। फिल्म जय जवान जय किसान के लिए पहली हिंदी गीत गाया, लेकिन पहले रिलीज हुई फिल्म छोटी सी बात उन्होंने 70 के दशक के सबसे मशहूर अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी। इनमें अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर और जितेंद्र शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कई गाने गाए। मलयालम फिल्म संगीत तो यशोदास के जिक्र के बिना अधूरा ही है, पर गौरतलब बात यह है कि उन्होंने हिंदी में भी जितना काम किया कमाल का किया। सलील दा ने उन्हें सबसे पहले फिल्म आनंद महल में काम दिया। ये फिल्म नहीं चली पर गीत मशहूर हुए, जैसे आ आ रे मितवा। फिर मशहूर संगीतकार तथा गीतकार रविंद्र जैन के निर्देशन में उन्होंने 1976 में आई सुपरहिट हिंदी फिल्म चित चोर के गीत गाए। इस फिल्म के संगीत ने लोगों के दिलों में यशोदास के लिए एक खास जगह बना दी। चित चोर का गीत गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, जिसने भी सुना वह यशोदास का दीवाना हो गया। इस गीत की रचना करने वाले रविंद्र जैन भी यशोदास की आवाज के मुरीद हो गए। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर उन्हें आंखें मिलेंगी तो वह सबसे पहले यशोदास को देखना चाहेंगे। अपने 50 वर्षों की गायकी करियर में यशोदास ने 14 भाषाओं में 35,000 से भी अधिक गीत गाए।

यशोदास ने जितने भी गाने गाए वह सदाबहार हो गए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दास्य एटन के नाम से जाने जाने वाले यशोदास की कामना थी कि वह मशहूर गुरुवायूर मंदिर में बैठकर कृष्ण स्तुति गाए, लेकिन मंदिर के नियमों के अनुसार उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका। और जब उन्होंने अपने दिल की बात को एक मलयालम गीत के माध्यम से श्रोताओं के सामने रखा, उस सदा को सुनकर हर मलयाली हृदय रो पड़ा।

कर्नाटक संगीत के विशेषज्ञ होने के साथ वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी कुशल है। उन्होंने सुंदर गीतों को प्रस्तुत करने के लिए दोनों कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को मिलाया। उन्होंने अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान रूसी, अरबी, लेटिन और अंग्रेजी गाने भी गाए। 1960 के दशक के मध्य में यशोदास ने प्लेबैक गायन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कॉलीवुड के फिल्मों में गाना शुरू किया और कुछ समय बाद उन्होंने 1970 के दशक के मध्य के दौरान बॉलीवुड में प्लेबैक गायन भी शुरू किया। उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यशोदास ने अपनी संगीत कला का पूरे विश्व में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कर्नाटक शैली में अरबी गीतों को प्रस्तुत किया। वे असंख्य प्रदर्शनों के माध्यम से विदेशों में भारतीय संगीत को बढ़ावा देते रहे। उनके उस अद्भुत प्रयास के लिए उन्हें केरल राज्य के अस्थाना गायिकान का नाम दिया गया है। उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

का नेतृत्व किया, जो अकेडमी के इतिहास में पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। डॉक्टर के जे येसुदास और उनकी पत्नी प्रभा वर्तमान में चेन्नई और फ्लोरिडा यूएसए में रहते हैं। सलील चौधरी को येसुदास को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय दिया जाता है। चौधरी की येसुदास से पहली मुलाकात तब हुई जब उन्हें राम करियात की मलयालम भाषा की फिल्म चैम्पियन के लिए संगीत तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि करियात ने चौधरी को क्यों चुना। चैम्पियन के बाद चौधरी मलयालम सिनेमा में भी एक जाना माना नाम बन गया। येसुदास ने चौधरी पर गहरी छाप छोड़ी। एक साक्षात्कार में येसुदास याद करते हैं कि ये चौधरी ही थे जिन्होंने पूछा था, क्या येसुदास हिंदी में गाने में रुचि लेंगे। येसुदास ने साक्षात्कारकर्ता से कहा, कौन मना करेगा। लगभग एक दशक लग गया, लेकिन चौधरी ने सुनिश्चित किया कि येसुदास की आवाज बॉम्बे तक पहुंचे।

जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज हम बात कर रहे हैं गायक यशोदास जी के बारे में। जाने मन जाने मन के बाद बासु चटर्जी ने यशोदास को अपनी अगली फिल्म चितचोर में एक और गाना ऑफर किया, जो कि आइकनिक गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। अनिरुद्ध भट्टाचार्य की किताब के अनुसार फिल्म के निर्माता ताराचंद ने यशोदास को गाते हुए सुना और कहा, आप उन्हें सभी गानों के लिए क्यों नहीं लेते। चितचोर में यशोदास के चारों गीत अद्वितीय हैं, जो उनकी प्रतिभा और विविधता को दर्शाते।

84 साल की उम्र में यशोदास के लिए हजारों पूर्णिमाएं नहीं बल्कि 72 मेलकाटा राग और उनके अनगिनत गुण संगीत स्वर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित करने के बाद वह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस प्रयास से उन्हें इस विशाल सागर का सिर्फ एक मुट्ठी भर हिस्सा ही मिला है। वे जीवन भर संगीत के छात्र रहे हैं और इस अंतहीन खोज के आगे समय भी सम्मान से खड़ा है। डलास में अपने घर पर यशोदास अपनी पत्नी प्रभा के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और संगीत सीखना जारी रखते हैं। थारंगनी के आधिकारिक YouTube चैनल के माध्यम से वे अभी भी नियमित अंतराल पर नए गाने जारी करते रहते हैं। यशोदास को कई सम्मान और पुरस्कार दिए गए। पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार 7 बार दिए गए। आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया। कर्नाटक राज्य फिल्म अवार्ड 3 बार दिया गया। केरल राज्य फिल्म अवार्ड 26 बार दिया गया। तमिलनाडु राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया।

दोस्तों, आज हमने सुनी एक ऐसे महान गायक की कहानी जिन्होंने अपनी सुंदर आवाज से हर दिल को जीत लिया। यशोदास जी के गानों ने न सिर्फ हमें मंत्रमुग्ध किया बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध किया। उनकी आवाज में वो जादू है जो कभी भी हमें प्रेरणा देना बंद नहीं करती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ वक्त बिताया और यशोदास जी की यादों और गानों में डूबे रहे। आशा है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए कार्यक्रम में। आप अपना फीडबैक हमें दीजिए 7056413010 पर। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 7। आज का कार्यक्रम आधारित था जाने माने बॉलीवुड गायक यशुदास पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: You are listening 90.0 FM, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। A community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

बादी सबा जाओ ना नदी के उस पार, पूछ के आओ ना उनसे उनका हाल, क्या करती हैं, कैसी रहती हैं, कैसी सोती हैं, कौन सी करवट लेते हैं वो, उनकी आंखें छू कर आओ ना, उनके माथे को चूम कर आओ ना, उनसे पूछ के आओ ना, वो चुपचाप क्यों रहती हैं, क्या मेरे बारे में कभी सोचते हैं। बादी सबा जाओ ना उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ ना, उनसे जाके कहो ना एक बार मिलने आओ ना। ऐ बादी सबा जाओ ना उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ ना, उनसे जाके कहो ना एक बार मिलने आओ ना। ऐ बादी सबा जाओ ना नदी के

दीन मेरा गया ईमान, जहाँ पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या, उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्र तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या, उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या, उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न

अपनी खामोश जिंदगी में बुलाना मुझको, अपने हसीन ख्वाब की ताबीर बनाना मुझको। मैं जो पूछूं तुम्हारा हाले दिल, तू अपनी हर धड़कन की आवाज सुनाना मुझको। मैं जो कभी रूठ जाऊं तुमसे, तू बहुत प्यार से मनाना मुझको। जो कभी हो दिल में हसरत तुम्हारी, बेझिझक अपनी हर हसरत बताना मुझको।

जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर ये ख्वाब देखता हूँ तो ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, पर उसकी परवाह करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है।

सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत सोपोरी आप सभी से मुखातिब हूँ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता से। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश बहुत पसंद आती होगी। और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं हमारे कार्यक्रमों के लिए और साथ में सुझाव भी भेजते हैं। आप भी हमें सुझाव भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो हम अंत में आपको नोट कराएंगे। और साथ में आपको ये कह रहा हूं कि आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 37 सेकंड। दिल से दिल का कनेक्ट 90.0 FM पर मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट और हमनवा भारत सोपोरी। देखिए ना, बातों बातों में और सुरमई गानों के कारवा में वक्त पंख लगाकर उड़ गया। अब घड़ी की सुइयां बता रही है कि रात गहरी हो चुकी है और हमें आज के इस सुहाने सफर को यहीं विराम देना होगा। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की इस खामोशी तक आप सबने जो रेडियो वितस्ता के साथ अपना वक्त बिताया उसने आज के दिन को बेहद खास बना दिया। दोस्तों, रेडियो बंद करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के दिन पर, यानी 7 अगस्त के इतिहास के पन्नों में क्या खास दर्ज रखता है और वो हम आपके सामने रखते हैं। पहला, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे। आप सभी को पता है कि आज नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। इस विषय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जी भी एक वीडियो संदेश सभी देशवासियों के लिए जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आप हैंडलूम के जो परिधान है उन्हें खरीदें। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे देश के बुनकरों, कारीगरों और स्वदेशी वस्त्र उद्योग के अतुलनीय योगदान को समर्पित है। 1905 में आज ही के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर पुण्यतिथि। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 7 अगस्त 1941 को इस दुनिया से विदा ली थी। आज का दिन उनके महान साहित्य और कलात्मक विचारों को नमन करने का दिन है। आप सभी श्रोताओं को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो ये रेडियो वितस्ता है इसको चलाती है संस्था वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला। वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से हमने रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं पर आधारित एक नाटक काबुलीवाला का मंचन अंबाला में, कुरुक्षेत्रा में और शिमला में किया था। बहुत ही कमाल का वो नाटक जो कविताओं पर आधारित है और बाद में उसको नाटकीय रूप दिया गया और वो नाटक करते हुए हमें बहुत गर्व हुआ और मुझे गर्व है उस नाटक को निर्देशित करने का। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समर उत्सव और इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1960 में पश्चिम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट ने फ्रांस से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की थी। इसके अलावा खेल इतिहास में 7 अगस्त 2021 का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा था जब भाला फेंकने यानी जुवेलिन थ्रो में एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीता था। जी हां दोस्तों, ये जानकारी थी आप सभी के लिए आज के लिए। कला, इतिहास और खेल की इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ अब आज के इस दिन को विदा कहने का समय आ गया है। अपने संदेशों और फोन कॉल्स से माध्यम से जो प्यार हमें दिन भर आप लोगों ने दिया उसके लिए रेडियो वितस्ता की पूरी टीम से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हर दिन की तरह कुछ पंक्तियां लाया हूं आपके लिए जो आपके लिए समर्पित है और उन पंक्तियों के बाद आपको देता हूं कल के कार्यक्रम का विवरण। आज की पंक्तियां यूं है, सुरों का ये पावन सफर हम रोज यूं ही सजाएंगे। सुरों का ये पावन सफर हम रोज यूं ही सजाएंगे वितस्ता की कलकल धारा से।
नए नगमे गुनगुनाएंगे। रात का ये खामोश पर्दा कल फिर नया सवेरा लाएगा, रात का ये खामोश पर्दा कल फिर नया सवेरा लाएगा। रेडियो वितस्ता की हर सुर, रेडियो वितस्ता का हर सुर आपके दिल को महकाएगा। जी हां दोस्तों, रेडियो वितस्ता का हर सुर आपके दिल को महकाएगा। तो ये थी आज की पंक्तियां आप सभी के लिए। देता हूं कल के कार्यक्रमों का विवरण। कल 8 अगस्त 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत। 7:05 पर संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9 होगा, ये तैयार हमने किया है आनंद बख्शी पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आज किरनी, और 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट का एपिसोड 1 सावधान समझदार बने। 9:30 कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2 पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 10:10 पर होगा कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 2 पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे रेट्रो हिट्स कार्यक्रम एपिसोड 6 शीर्षक होगा जज्बात, और पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है खुशबू। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का, और कल तक आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी आपको जो मैंने आप तक पहुंचाई इसका संकलन यानी इसको कंपाइल किया हमारे कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। टीम रेडियो वितस्ता की ओर से और बस अपनी आंखें मूंदिए, सुकून की एक गहरी सांस लीजिए और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाइए। मैं भारत सोपोरी आज 7 अगस्त 2026 को इस प्रसारण को यहीं आपसे लेता हूं विदा। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ फिर मिलेंगे 90.0 MHz पर, जो आपके जीवन का हम सफर है, केवल और केवल रेडियो वितस्ता पर। कल तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।